0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Welcome back, this is Reet Kaur Sahari, you're watching NDTV. Well, some breaking news coming in at this hour, let's take you through it. We're understanding that the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has assured justice in the Surya Pratap Chauhan murder case. That's right, days after stabbing of 17-year-old Surya Pratap Chauhan, now the Chief Minister Yogi Adityanath has assured justice in the case. Remember, an important update that also came about this weekend was the fact that the accused had been killed in a late-night police encounter on Saturday. Chief Minister Yogi has reacted to the case, saying that the murder under the guise of friendship is not acceptable. On the other hand, the opposition has slammed the Chief Minister over Asad's encounter. Asad, remember, was the accused in the case that was killed in the police encounter on late Saturday night. Samajwadi Party MLAs have come out and said the encounter is being done looking at religion. So they've given a communal angle to it. The Samajwadi Party has come about and said that Asad's encounter is extremely wrong. So on one hand, you have the Chief Minister that said that the murder will not go unpunished. But on the other hand, you have the Samajwadi Party saying that the encounter took place in the guise of religion. It's something that was... did in fact have a communal trait to it. We also have some reactions coming in on this. Let's take you through them.
2: आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है।
3: ये बदबू गलत है, कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये एक ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेंटी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए आप, उससे कबुलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है।
1: Well, on that note, slipping into a very short break, more news and updates coming in on the other side.
4: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal. This was the hottest election in all of India. And all of India watched it on NDTV.
2: Why I say this, it could be a big story.
3: Thank you.
1: Stories that no one else had.
4: The memorial they have built is not just for Avicii.
1: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
5: Moments
1: that gave competition viral fever.
6: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा
7: बंगाल बचाने का वोट
8: फाइट फॉर जस्टिस फाइट फॉर एवरी वुमन हियर
1: व्हेन इट वाज एनीथिंग बंगाल यू ट्यून्ड इन ओनली टू एनडीटीवी दिस योजी सिलेक्शन एनडीटीवी
9: साइज ऑफ फिश व्हाट टेस्ट ऑफ फिश यू लाइक

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: का राजा प्योर मसाला।
5: The situation in the Strait of Hormuz right yes. now and Iran, the last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
6: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
5: हाई रेट चेक द ऑडियो।
6: लेट्स डू इट।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
2: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
1: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
3: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, वी आर नॉट स्टॉपिंग अंटिल द जस्टिस इज सर्व्ड।
4: मिसिंग, वेयर इज योर सन? लेट मी आस्क यू दैट पॉइंटेड क्वेश्चन।
5: ही इज रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस बट ही हैज टू एग्जॉस्ट हिज लीगल रेमेडीज।
6: ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन, समर्थ सिंह हैज फाइनली सरेंडर्ड। दीज आर फ्रेश विजुअल्स कमिंग ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी।
7: क्या कहना, आप सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हो?
6: NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
1: Joining us live now for the first time is Brigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
8: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
1: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.
0: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international.

0: एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है, इसलिए जनता को यह मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है कंप्लेन दो टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीप शाह, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है।
1: देखिए पब्लिक तो नाराज है, ये साफ दिख रहा है, नाराज बहुत सारे कारण से है। और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स जो पब्लिक नाराज हो ऐसा काम नहीं किए हैं वो भी इसमें पिस जा रहे हैं। तो जो अपना आत्मसम्मान है जिनका, जो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, तो अभी हो सकता है वो लोग थोड़ा सा भी दूरी बना के रख रहे हैं, परिस्थिति थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसको छोड़ के तो कोई चारा नहीं है। जिस तरीके के घटनाएं बाहर आ रही है पंचायत स्तर में, म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे, ये तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको शर्म में डाल दे रहा है। हम लोग सबको यही लग रहा है कि भाई क्या चल क्या रहा था, तो जब तक बाहर नहीं आता आप जान नहीं पाओगे। अब जानकारी हो रही है तो खराब लगना तो बहुत नेचुरल है।
2: दिस इज एन एट्रोशियस इवेंट। पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ अभिषेक बैनर्जी, एक्चुअली ऑन 19th, ऑन 6th देयर वाज नो रेजोल्यूशन, देयर वाज अ सिंगल रेजोल्यूशन that Abhishek Banerjee needs to be congratulated for the effort he has given. On 19th, we were asked that to put signatures, attendance signature, but said that put the date as 6th. Then we saw, me and Sandipan, that there were many names who are not present in the meeting. So this is an atrocious event, outrageous. So we thought, as a custodian of the house, the speaker must be made aware, but because the speaker doesn't have a political party. So we thought it is necessary to go to the speaker and we went to him.
3: फर्स्ट कट मनी चोरी, लैंड चोरी, जॉब चोरी, नाउ सिग्नेचर चोरी। अभिषेक बैनर्जी एंड हिज ग्रुपिंग हैज डन सिग्नेचर चोरी ऑफ द टीएमसी एमएलएस एंड द टीएमसी एमएलएस हैव मेड दिस एलिगेशन। टू एमएलएस हैव कम आउट एंड मेड दिस एलिगेशन दैट द रेजोल्यूशन व्हिच वाज साइंड वाज नॉट साइंड बाय द टीएमसी एमएलएस, दैट सिग्नेचर्स हैव बीन फोर्ज्ड। दैट इज व्हाई व्हेन ममता बैनर्जी हैज कॉल्ड द एमएलएस टू हर हाउस फॉर द मीटिंग, majority of them, 50 to 60 of them, have not turned up because they are not with the Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee faction. They are saying that these people are signature chores. This shows that if out of power they were doing such kind of manipulation, forgery with their own MLAs, imagine in power what forgery they were doing.
4: As to sare pakda gaye jo Abhishek Banerjee ne khud karaya aur sath sath जो उनका सिक्योरिटी बढ़ाने का मांग को और भी तेज करने के लिए ये सारे नाटक रचे गए, लेकिन ये सब पकड़ा गया है। इसीलिए जितना भी वो प्रोटेस्ट करे, जनता उनका बहका में आने वाली नहीं है। एक पार्टी समाज का हर जगह पे तो चोरी कर रहा है, सिग्नेचर भी चोरी कर रहा है, ये विश्व में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आने का एक विषय है। कभी सिग्नेचर ऐसा विधानसभा का चोरी करके सिग्नेचर लगाए, ऐसा घटना शायद देश में विदेश में किसी जगह में नहीं हुई।
5: Let's now take you through the conspiracy there by the TMC and how the party is now downplaying the crisis. First up, what happened? 60 out of 80 MLAs were absent from Mamata's key meet, after which, of course, there was a protest that we are seeing right now, the dharna by Mamata Banerjee. Apart from that, most MLAs were incommunicado during the meeting. Second, two TMC MLAs were sacked for anti-party activities. The MLAs there alleged signature forged in TMC documents as well. Third, 160 plus TMC councillors, they've quit from civic bodies there. Diamond Harbour Municipal Board has also been dissolved. Fourth, 181 FIRs filed against TMC leaders so far, and multiple TMC leaders have also been arrested. Apart from that, Kakoli Ghosh has also quit from TMC post. And apart from that, attends review meeting. Kakoli Ghosh, after quitting the party, has attended review meeting with the Bengal Chief Minister Suvindu Adhikari. Apart from that, Indraneel also seen quitting electoral politics. And Chandanagar Municipal, he has also resigned from his position. Spokesperson Shantanu Sen and Arup Chakrabarti also quit, and they have rather come out and they've openly criticized TMC, TMC leadership, and even Mamata Banerjee. As of now, TMC leaders also faced slogans. Several, including Abhishek Banerjee, were also roughed up over the weekend. So this is the current state of Trinamool Congress Party there and Mamata Banerjee's party.

0: स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है।
1: क्या क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे जो हैं वो शुरू में देखा हमने, पहले एनकाउंटर हुआ फिर बुलडोजर का एक्शन, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना?
2: देखिए, लोगों में सरकार की प्रायोरिटी ये होती है, लोगों में सुरक्षा की गारंटी देना। सरकार सुरक्षा की गारंटी दे रही है। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूँ ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग। और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, हमने पहले देखा कि असद का एनकाउंटर हुआ, परिवार जो है लगातार गुहार लगा रहा है कि बाकी जो 6 लोग और इसमें सम्मिलित थे उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। क्या
2: आप निश्चित समझिए, मौत की सजा मौत होती है, उन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी।
3: ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती। शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेंटी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए आप, उससे कबुलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है।
4: मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेना, आप गैर कानूनी काम करना इसका मतलब ऐसा होता है। कहाँ ना कहाँ सरकार ने कभी भी इस तरह से कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है।
5: Let's get in Dr. Kaushal Kant Mishra representing the BJP, Abbas Heather representing the SP, and Dr. Shantanu Gupta, author and political analyst, biographer of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath with us on the broadcast. Let me start with Dr. Mishra on this. The one thing that the opposition has been saying again and again, and they've in fact reiterated that at the end of the day, why is it that the process is subservient there in the state of Uttar Pradesh? The bulldozer model is subservient to the entire process that is not being followed. Why is it that you have so many encounters that are taking place? Let the law take its own course.
6: I think everybody must know that every encounter has got a judicial panel behind that, and every encounter has been checked by judicial panel. So if there is any lapse, then it can be identified. But since last 7-8 years, since the Yogi ji is there, none has been able to find that any encounter was planned encounter. It was incidental, but yes, it is a government in which nobody can fire on the police. Police will fire and kill if anybody is firing on them. There is no restriction on police. Police has given the full free hand and they can deal in their situation in which they are. So regarding Samajwadi Party, at the time of Samajwadi Party government, all the criminals are in hands and gloves with the Samajwadi Party chief minister. We have seen how the chief minister was shaking hand with the dog of that mafia. So that time has gone. Now there is a strict rule of law, and we have seen that because of a strict rule of law, the incident of, according to NCRB data, the incident of crime reduced to 50% national average. Now the crime rate in the Uttar Pradesh is 50% less than the national average all over the country. And that is why we are now the growing economy. Now the Uttar Pradesh is second economy of the country. Why? Because there is a safety, there is security.
5: Okay. Abbas Heather, respond to what the BJP spokesperson is saying, that we've been able to reduce crime by half. There was complete Gunda Raj during SP era. That has changed now.
7: Well, not at all. First of all, it is a very unfortunate incident, very tragic. And I believe that it deserves the strictest punishment under the law. But I believe under the law. See, like you said, the administration, the government is subservient to the law of the land. But here in UP, what we all see is that there is no law of the land. In fact, even the High Court, Allahabad High Court, has said that punishing accused is work of the court. The judicial work should not be done by the administration. We are not against encounter, I repeat, but this is a reality that there has been not a single encounter which has happened in Uttar Pradesh. These

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Shiv Arun, NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है। रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
9: Check the audio.
10: Let's start.
11: Breaking story, we're jumping straight into it.
12: We've got a picture of the letter.
13: What is in your letter?
12: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
14: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
15: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
16: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
17: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
18: The line of control, Ship Arur, NDTV.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: बात है, आप फोन ऑफ कर दें।
1: अरे बिजी हो कैसे भी, योर लीडर द पर्सन हु फाउंडेड दिस पार्टी द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ममता बनर्जी इज द ओनली वुमन हु फॉर्म्ड द पार्टी, केम इनटू पावर एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर। देयर इज नो अदर एग्जांपल। व्हेन शी इज ऑन द स्ट्रीट, हाउ कैन यू बी बिजी? हाउ कैन यू बी बिजी? व्हाट बिजनेस डू यू हैव? देयर वर एमपीज हु वर मेड एमपीज एंड आई एम नेमिंग देम टुडे because I had, I do not have the shackles of a party line now.
2: Man in Dubai, when, that is what business is.
1: So, theek hai, Pradeep sahi bol raha hai. Nini Chakraborty was made MP from Jadavpur. And there is evidence that when budget session was going on in the Lok Sabha, she was posting pictures of cupcakes sitting in Paris celebrating her birthday. I raised this issue to the quiz master. He said, don't talk about MPs. If you talk about MPs, you are challenging Mamata Banerjee. ये हाई हैंडेडनेस करके ही तो यहां पर आ गया है।
0: सोमनाथ भारती, यू आर हियरिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, हियर इज एन इंसाइडर सेइंग कि या तो लोग
1: पद्मजा, आई वांट टू रिमाइंड योर व्यूअर्स, आई वांट टू रिमाइंड योर व्यूअर्स, व्हेन द आरजी कॉर इंसिडेंट हैपेंड, वी एज डेडिकेटेड पीपल ऑफ तृणमूल कांग्रेस, वी नेवर केम आउट इन द मीडिया एंड डिड एनी हल्ला गुल्ला। बट इफ यू आस्क योर स्टेट काउंटर पार्ट्स, four spokespersons including me who raised an issue within the party that our conscience is not permitting us for this Arji Kaur, we were removed from the post of spokesperson for 3 months. Do you know that? Today to main khulla aadmi hu, main kuch bhi bolunga, main sach baat bolunga.
0: Are Badal ji kuch boliye bhi, aap baith ke sar kyu hilate ja rahe hain? Wo to bata rahe hain ki aapke MPs phone off karke baith gaye hain. Aap sar hi kyu hila rahe hain? Kuch boliye bhi.
3: Aur kya kahe,
0: aap kyu mute pe chale gaye hain? बोलिए बोलिए, आई एम कमिंग टू यू गार्गी जस्ट अ सेकंड। बादल देवनाथ,
4: देखिए मैडम, ए छोटा भाई जैसा है, 3-4 साल नहर नेशनल सेल में स्पोक्स पर्सन, इनको सर्टिफिकेट मिल गया, 3-4 साल इन्होंने बोला और इनको रिजो किस मोने करो ना, इनको अभी मोन रहा है वो बहुत बड़ा लीडर हो गया और 20-25 साल, अब 10 साल हो गया नेशनल चैनल में मेरा, 10 साल हो गया मैडम, 20-25 साल जब ममता
1: बनर्जी दे रहा है, वॉइस इज ब्रेकिंग,
4: जब एनडीए के साथ था, मुकुल दा, पार्थो दा,
0: अरे सर आज की बात बताइए ना बादल देवनाथ, आपके सारे एमपीज अपना फोन ऑफ करके बैठ गए हैं, क्यों आप अपना रिजु दत्ता का रेज्यूमे क्यों दे रहे हैं? आज की बात बताइए ना
3: बादल दा, आपने बोलून
4: मैडम, लेट मी फिनिश मैडम, प्लीज वन मिनट अलाउ मी,
0: यू विल फिनिश व्हेन यू स्टार्ट, यू हैवंट इवन स्टार्टेड आंसरिंग माय क्वेश्चन।
4: मैं आंसर दे रहा हूं, मैं हूं तो इसलिए मैं आंसर दे रहा हूं।
0: अच्छा अच्छा,
4: मैं अभी भी मैं कहता हूं मैं सोशल वर्कर हूं, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोई समझता है मैं लीडर बन गया, तो 35 साल मैं सोशल वर्क में हूं और 3 साल में इनका करियर खत्म हो गया, 3-4 मीटिंग किया और इनको पता है मैं कितना स्ट्रीट कॉर्नर कितना मीटिंग में जाता हूं, मैं इनको पता है, लेकिन मैं रिजू को बोलूंगा, रिजू थोड़ा संभाल लो,
0: संभाल लो रिजू, संभाल लो, ये बीजेपी पे ट्रस्ट मत करो।
4: मैं दिल्ली में
1: मजा कहना कमेंट,
4: मेरा माँ को
0: देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल इफ यू हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बीजेपी। शामिक भट्टाचार्य आई सेड द डोर्स आर क्लोज्ड फॉर यू, कुछ नहीं मिलेगा रिजू दत्ता। बादल देवनाथ आल्सो सरप्राइजिंग यू,
1: आई विल टेल यू समथिंग पद्मजा, बादल देवनाथ इज अ सोशल वर्कर हु लिव्स इन साउथ 24 फरगोना and he was taken a ride by some communities that he used to sponsor, and when in Trinamool, Padmaja, you know there is a ban culture also, ye channel ye anchor hamare bare mein baat nahi kar rahe to inko ban kar do, spokesperson mat bhejo, to wahan par aap log pakad pakad ke is bechare ko late the aur isko Trinamool Congress se phone karke dhamkaya jata tha, ye Badal Devnath ko, theek hai, to ye 35 saal itna meeting kiya, isko neta nahi banaya party ne, समझ रहे हैं आप चीज को, तो बहुत कुछ हमने देखा।
0: देखिए जब कैन ऑफ वर्म्स खुलता है तो बहुत बहुत चीजें बाहर आती है। सोमनाथ जी देखिए, आप यू नो यू शुड इंश्योर दैट टुमारो राघव चड्ढा, संदीप पाठक शुड नॉट कम ऑन

0: लेकिन मैं किसी को छोड़ के नहीं गया, मैं नहीं हूँ, मेरा एज 54 हुआ मैडम, 54 एज चल रहा है, और अभी भी हर जगह मैं जाता हूँ, जहाँ बोलता है तही करता हूँ। और मैं जब वैसे बोलता हूँ ममता बनर्जी को, मैं बचपन से प्यार करता हूँ, जब मेरा 14 साल था तब उनका दयाल राइटिंग किया था 1984 में, तब 1986 में मैं माध्यमिक दिया।
1: On a serious note though, Riju Dutta, I think what Badal Devnath is trying to say is that there is a real ideology which lives in the heart of people like him, whether they are social workers, whether they are political analysts, whether they are party spokespersons, and then there are junior artists, in his words, who are only going to run after power and money. Ideology means nothing to them. Riju Dutta.
2: See, I will say this, Trinamool Congress has only one ideology, and that is Mamata Banerjee. We are not like the BJP or the left with specific ideology. Trinamool Congress's ideology is Mamata Banerjee. Badal Devnath does Trinamool Congress looking at Mamata Banerjee. I did Trinamool Congress for 15 years looking at Mamata Banerjee. There is no denying that. But the thing is, like Mr. Social Worker Devnath ji is telling me, that he has suffered so much, he has done so much, and this and that and falana, dimkana. The party has still not recognized him. The party, abhi to spokesperson sab khali ho gaye. Now to young kids of 20, 21 year old people are coming to channels as spokespersons. Why do not they make Badal Devnath spokesperson? Ye to banned channels mein jate the aur bechare ko chamkate the.
1: Chalo bhai, idea number 3 has also been offered. Pradeep
3: Bhandari.
1: Resume bhej dijiye bhai, Riju Dutta ko wo pahuncha denge. Bataiye.
3: Well, I would appeal to people that Badal ji ko koi na koi Bombay ke andar kisi picture mein role de dijiye. ये बिल्कुल जो है अच्छे पिक्चर में रोल फिट होने वाले हैं। बट आई विल कम टू द मूड पॉइंट, स्टिल नॉट, नाइदर बादल हैज आंसर्ड नॉर सोमनाथ जी हैज आंसर्ड। वेयर आर द टीएमसी एमपीस, वेयर आर द टीएमसी एमएलएस, वेयर इज मेनका गोरुस्वामी हु वाज गिवन द राज्यसभा? ऑल ऑफ देम नो दैट द ओनली आइडियोलॉजी ऑफ टीएमसी वाज पावर, पावर गॉन, ऑल ऑफ देम हैव पुट देयर फोन, समबडी माइट बी टॉकिंग टू राहुल गांधी, समबडी माइट बी टॉकिंग टू अखिलेश। आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग एंड रिकॉर्ड दिस क्लिप। महुआ मोहित्रा वुड हैव ओपनड हर हॉटलाइन विद राहुल गांधी ऑलरेडी बिकॉज शी नोज दैट ममता बनर्जी डज नॉट हैव अ फ्यूचर। बादल देवनाथ माइट बी थिंकिंग मैं सोशल एनालिस्ट लगा दूं सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप सपोर्टिंग टीएमसी ज्यादा डिबेट में नहीं आ सकते। देयर इज अ क्विज मास्टर हु माइट बी thinking to launch a quiz show. Saini Ghosh has already become a new enraged Hindu after the election. Sabne apna career, apna retirement plan dekh liya hai, सिवाय दो लोगों के, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, क्योंकि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का कार्यकर्ता खड़ा हो गया। दैट्स द ओनली ट्रुथ, मार्क माय वर्ड्स, ऑल दीज एमपीज एंड एमएलएज हुव नॉट टर्न्ड अप माइट हैव ओपन्ड देयर हॉटलाइन आइदर विद द कांग्रेस और द टीएमसी। एटलीस्ट द एमपीज वुड हैव स्टार्टेड टू स्पीक टू राहुल गांधी कि हमें ले लो, हमें ले लो, अब टीएमसी का कोई भविष्य।
1: बादल देवनाथ
0: मैडम, मैं इनको प्रदीप भंडारी को बार बार मैं कहूंगा, बार बार मैं बोला, बहुत बार बोला, एक बार दोबारा नहीं। प्रदीप भंडारी का मैं एक आंसर, एक सवाल कर रहा हूँ, प्रदीप भंडारी बता दो तो आजकल पूरा देश में औरंगजेब कौन है?
3: अभिषेक बनर्जी।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: औरंगजेब कौन है?
3: अभिषेक बनर्जी।
0: हाँ, तुम नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा देश
3: भाईपो, भाईपो है,
0: पूरा देश को जो
3: ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके वो है।
0: एक ममता बनर्जी, एक,
3: अरे आप तो यार बादल भाई बात ना करो, आप पहले निर्णय करो आप हो कौन,
0: तब जीत का बार बड़ा
3: भाई आपके घर के बाहर निकलो और देखो सच्चाई
0: तो शर्म करो,
3: बदल होबे बादल देवनाथ टाटा बाय बाय होबे।
0: 40 साल 37-38 साल उम्र बच्चा को औरंगजेब बोल रहा हूँ, अरे उसको पहले आने दो।
3: हो गया क्या वो जो चार मई के पहले कह रहा था कि गृह मंत्री को आ जाए, चार मई के पाल्टा के अंदर आके दिखाए, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो है पश्चिम बंगाल के
0: अंदर
3: बच्चा है 37 साल का, कोई बच्चा नहीं है 37 साल का, वो उसने पश्चिम बंगाल की माँ बेटी मनुष्य के साथ में अन्याय किया है, लीगल एक्शन विल बी टेकन। इसने बंगाल के टोलाबाजी करी है वो जेल जाएगा, याद रखना बादल देवनाथ।
0: किसी महिला को आज तक कोई भांडा नहीं दिया बंगाल में 3000 रुपया किलो।
3: हाँ देखा था संदेश काली और आरजी कार के अंदर पश्चिम बंगाल की माँ और बेटी को
0: तुम्हारा कागजात।
1: यू नो एंड इफ दीस प्रॉमिसेस आर अनकेप्ट देन ऑल द मोर रीजन दैट द टीएमसी शुड हिट द स्ट्रीट्स शुड रैली ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड शुड बी आउट देयर इन फुल फोर्स एंड नॉट लीव ममता बनर्जी अलोन टू फाइट दिस फाइट। द पॉइंट दो इज एंड आई अगेन वॉन्ट टू कम टू दिस, हु इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। आई आस्क दिस क्वेश्चन टू गार्गी।

0: he was one of the heads in those times. Mm. But since everyone showed a lot of trust in this one person, and with so much confidence, he was gotten into it to salvage the country from this situation. And the time was very limited.
1: Mm.
0: So it's a thriller running against time.
1: Mm.
0: So what I was trying to get at is a usual mainstream trope.
1: Mm.
0: But the backdrop is RBI.
1: Mm.
0: But the backdrop is economics.
1: Mm.
0: I can say it with lot of confidence that in this very building of yours, 90% of the people who work here were very bad in mathematics in schools, including me, who's
1: including
0: sitting here.
1: Me.
0: Okay. So how to make it interesting?
1: Mm.
0: How to make it exciting? And how to make it engaging?
1: Politics as it is, लोग थोड़ा सा डरते हैं फिल्म इंगेज करने में, और ऊपर से आप इकोनॉमिक्स भी ले आइए,
0: इकोनॉमिक्स है इसमें,
1: और फिर उसको थ्रिलर बनाइए.
0: So I would say there's a victory of writing when it comes to governor.
1: पर मेरे को ये बताइए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी,
0: चंद्रशेखर जी
1: की सरकार थी, लेट्स से नॉन बीजेपी सरकार थी, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं लार्जली वो ये कहा जाता है कि भाई आप एक ही तरीके की थॉट का, एक ही तरीके की आइडियोलॉजी का महिमा मंडन करते हैं. सो टू पिक अ फिल्म फ्रॉम बिफोर 2014, हाउ डू यू नेविगेट दोज लैंडमाइंस कि भाई हम एक देश की कहानी बता रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम लाइन टो नहीं कर रहे हैं.
0: बट आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इन गेटिंग मिस्टर एस वेंकट रमनन टू दैट पोजिशन, एवरी वन वॉज रिस्पॉन्सिबल. ऑन वन हैंड ही वॉज रिकमेंडेड बाय मिस्टर गांधी, and also there was an approval from Dr. Manmohan Singh, but also the BJP opposition, who was in alliance, the finance minister was Yashwant Singh, Chandrasekhar ji was the prime minister. So there was an approval and agreement from each and every party. They had to come together. There was no other option left. Either you come out of it or you declare this nation bankrupt.
1: Mm.
0: So this was a crisis time. We are talking about why this is important for the Gen Z or the generation next, that this country, you know, was not always supplied with Coke and Pepsi. Or this country was not holding mobile phones. There was one person before malls came in, you know, who was responsible, whose one decision was responsible, where the entire nation came together and took this decision that the challenges were the naysayers within the department. Everyone thought that, you know, he is the scapegoat for the political regime, and everyone was waiting for him to fail. And there was this man and his conviction, man with very few words, with loads of action, loads of ideas, and how when he implemented it, and he became and the nation became successful in executing it, that becomes the reason for Manmohan Singh and P.V. Narasimha Rao Sarkar, you know, to come up with liberalization, and how the open market economy, everything started, you know, unfolding. So I'm not interested in that as an actor. What I'm interested in, a protagonist coming into a challenging time, and with his effort and ideas, we somehow accomplish something impossible without letting anyone know about it, without letting even the media know about it.
1: You engage with politics. आपके बिहार चुनाव के दौरान भी आपका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, क्या आप एंडोर्स कर रहे हैं आरजेडी को?
0: देखिए, ये तो आपके लोगों ने बताया होगा आपको. मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा था. ऐसा वीडियो तो कभी भी बना सकते हैं. मैं आपको
1: जैसे आपने एक और पहले दिया था स्टेटमेंट दिया था जो इनटॉलरेंस की पूरी बात हो रही थी, उसमें आपने एंगेज किया था कि भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना खास इनटॉलरेंस देश में हो रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को,
0: किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना मैं बिलोंग करता हूँ, ना मैं कोई मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं. मैं पागल हूं अपने अभिनय के पीछे. और जहां तक बात है पढ़ने लिखने की, तो जाहिर सी बात है मैं अज्ञानी तो नहीं रहना चाहता हूं. मैं उन लोगों की तरह से नहीं होना चाहता हूं कि जो ट्विटर पर जाकर के लोगों को गाली देते हैं बिना किसी ज्ञान के. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अपने काम में लगाना चाहता हूं. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई उस फिल्म में लगाना चाहता हूं जो फिल्म मैं कर रहा हूं. अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो मैं गवर्नर कैसे कर पाऊंगा. तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आप को एजुकेट करूं. ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं नॉलेज गैदर करूं. ये मेरी ज़िम्मेदारी है क्योंकि मैं मुझसे यंग जनरेशन भी आके बात करता है. सो व्हेन द यंग जनरेशन इज़ कमिंग एंड टॉकिंग टू मी आई कैन बी टॉकिंग टू देम इन एयर. माई कन्वर्सेशन विद देम विल बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई गैदर्ड राइट. सो as a responsible citizen of this country we try to educate ourselves or enlighten ourselves.
1: kya poochte hain aapse young generation kyunki aajkal gen z ki bahut baat hoti hai, kya poochta hai gen z aapse?
0: dekhiye gen z ke paas mein kya hota hai jo usually I am always wondering, they want to spend some time with me and I keep telling them that you know spending time with me I will say few words that may click with you or inspire you. But at the core of it, you will have to work very hard. But somewhere they are coming to me expecting that कि मैं एक कोई acting की पुड़िया दे दूँगा. पुड़िया तो ऐसी कोई नहीं होती है. पद्मजा जो है कई सालों से इस न्यूज़ रूम में बैठ रही हैं, तब जा कर के उनको ज्ञान हुआ है. लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार आप न्यूज़ रूम में आके बैठी होंगी तो इन कैमराज ने और इस माइक ने आपको बहुत डराया होगा. आपके पीछे जो ये सारा चल रहा है इसने बहुत डराया होगा. इन लाइट्स से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी. पीछे लोग हल्का सा भी मूव करते होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता होगा. इस ओवर द ईयर्स यू गेन्ड नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन. यू गेन नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस. यू गेन नॉलेज बाय रीडिंग अबाउट इट, बाय रीडिंग वेरियस अदर पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड दैट्स हाउ यू रेडी योर सेल्फ टू इम्पार्ट द सेम एक्सपीरियंस and knowledge to the next generation, right? And this is what I do.
1: But आपको लगता है कि Gen Z के लिए अभी देश एक ideal situation में है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आपने Gen Z का जिक्र उठाया था.
0: आप जो है ना फंसवाने के चक्कर में आई हुई आप तैयार वार होकर के आई हैं.
1: अरे सब लोग जो है आपसे इतने सवाल पूछते हैं तो दो तीन सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ. अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन शुरू करने वाली है, Gen Z आपसे पूछेगा मनोज जी बताइए क्या करें अभी इस देश में? जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या आप देखें एक विकल्प कॉकरोच जनता पार्टी, क्या करेंगे मनोज?
0: अच्छा देखिए क्या है, पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले उनको ये बात बोलूँगा कि आप अपनी स्थिति में अपनी स्थिति को बेहतर जानते हैं. मनोज वाजपेयी नहीं जानता है. मनोज वाजपेयी इस समय 32 साल से इस फिल्म के निर्माण में लगा है, एक एक्सपीरियंस है. मैं आपकी स्थिति तक जानना चाहूँ तब भी नहीं जान पाऊँगा. लेकिन अगर आप स्थिति को लेकर सजग हैं, उसको लेकर के प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो जो भी संभव हो सके वो कीजिए. और आपको एम्पावर किया गया. देखिए आप अगर सोशल मीडिया से आप एम्पावर कर रहे हैं, मोबाइल हर हाथ में फ़ोन देना मतलब क्या है? एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द कंट्री. जब आप एम्पावर करते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी. लेकिन एट द कोर ऑफ इट, इफ़ यू आस्क मी, एट द कोर ऑफ इट, मैं हमेशा जो है एक ही बात कहता हूँ. मेरे बचपन में एक मास्टर साहब थे, उनका नाम था छेदी महतो. उनके क्लास में मैं जाता था, जो कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता था. तो मैं हम लोग अपने अपने बोरी बिछाते थे, बैठते थे उस झोपड़ी में. और मेरे बगल में एक रामचंद्र था जो सुबह घास काट करके अपनी गाय को खिला करके और फिर वो स्कूल आता था. हम दोनों की उम्र क्या थी? 6 साढ़े 6 साल 7 साल. और रामचंद्र टॉपर था. रामचंद्र के जीवन में छेदी महतो साहब का बहुत बड़ा योगदान था. रामचंद्र जो है वो ज़्यादा आगे कॉलेज के बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, रिसोर्सफुल नहीं था. तो उसने अपना ट्यूशन खोला और वो ट्यूशन सुपरहिट था बेतिया हमारे शहर में. हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए रामचंद्र जो है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था. रामचंद्र ने उनको पढ़ाना शुरू किया था, उनको सिखाना शुरू किया और कई सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई. तो मेरा ये कहना है जो यंग जनरेशन होता है ना, उसकी उम्मीद की एक ही किरण होती है, छेदी महतो. हर किसी का एक छेदी महतो होता है. मेरे लिए जो छेदी महतो थे, मेरे लिए जो गंगा सागर सर थे मेरे स्कूल के, तो जब नई ऊर्जा जब होती है, हमको उनको बिठा करके उनको सुनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है या है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके आगे कुछ भी आप सवाल करेंगी तो मैं कहूँगा गवर्नर के आगे आउट ऑफ सिलेबस है।
1: एक नया जॉनर भी है, जैसे कि पिछले साल हमारे धुरंधर आई थी, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था ये कह के कि भाई ओवर द टॉप है एवरी थिंग, यू डू नॉट नीड टू यू नो बीट पीपल ऑन द हेड विद अ हैमर। हाउ डू यू कंपेयर दैट जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग विद वॉट मे बी इज अ मोर क्वाइट नेशनलिज्म कह लीजिए या क्वाइट स्टोरी टेलिंग कह लीजिए, हाउ डू यू कंपेयर द टू? क्या दोनों के लिए एपेटाइट है देश में?
0: अब हमेशा से रही है। आप जब छोटी थी, जब बड़ी हो रही थी, अपने पेरेंट्स के साथ फिल्म देखने जाती थी, तब का समय भी याद कर लीजिए, बड़े बड़े बजट की फिल्में भी चलती थी और छोटे बजट की भी फिल्में चलती थी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि देर यूज टू बी अ टाइम वेन मिस्टर बच्चन केम ऑन द सीन एंड इट वॉज लाइक स्टॉप, ही वॉज हरिकन, मतलब नो स्टार कुड स्टैंड दैट स्टॉर्म। यही बड़ी मतलब आंधी की हवा में उड़ रहे थे सबके सब, बट एट द सेम टाइम देर वॉज दिस क्वाइट प्रोडक्शन हाउस विच वॉज बिल्डिंग अप बट मेकिंग स्मॉल एंड मिड रेंज फिल्म एंड देयर हीरो वॉज अमोल पालेकर, इवन दे वर वेरी वेरी सक्सेसफुल, ऋषिकेश मुखर्जी। ओनली इन द टाइम ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन देर वॉज दिस पैरेलल मूवमेंट हैपन वेर मिस्टर श्याम बेनेगल एंड सो मैनी अदर्स वर मेकिंग फिल्म्स एंड दे वर गेटिंग देयर ऑडियंस टू द थिएटर। सो एवरी टाइम विल हैव इट्स बिग बजट, मिड बजट एंड स्मॉल बजट।
1: बट नाउ दिस इज नया भारत, नया भारत जहाँ पे कुछ बड़ा होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को एकदम घुटनों पे ले आया टाइप की फिल्म।
0: नया भारत में एक हिंदुस्तान और भी रहता है जो युवा वर्ग है, और एक नया भारत में वो मजदूर भी है, नया भारत में ऑटो रिक्शा वाला भी है। तो हम सबके लिए फिल्में बनाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस नए भारत की जिसकी बात कर रही हैं आप, उसमें परिवार तो इस भारत से अलग नहीं है। वो परिवार जो ज़्यादातर जो वायलेंस वाली फिल्में या किसी और तरीके की फिल्में देख नहीं पाता है साथ में, गवर्नर उनके लिए है। और एक औरत अगर फिल्म देखने नहीं जाती है तो पूरा परिवार उस फिल्म को देखने से वंचित रहता है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये हर औरत फिल्म देखने जाएगी। ये हमारी कहानी वो एक सिर्फ ब्यूरोक्रेट की नहीं है, उसके परिवार की भी है। एक उसकी बेटी की है जो UPSC की परीक्षा देने वाली है, दे रही है। ये सारी उम्मीद की है, महत्वाकांक्षा की है, जो सब मिडिल क्लास या जो सैलरी वाले जो है अपने बच्चों के लिए देखते हैं। जी
1: आपने the other recent film that you did which again ran into a lot of controversy was Ghooskhor Pandit. When you look back at it, do you think it was warranted? Because ye mamla to pura matlab court tak ka gaya, wahan par log pradarshan ke liye utar aaye, kaha ki bhai aapko sirf pandit hi kyun ghooskhor dikhte hai? In retrospect aapko lagta hai ki isko thoda temper kiya ja sakta tha?
0: First of all, the film is still not released. Netflix is the OTT. It will come in August sometime, I think. So when we are naming the film, I'm not disowning the film. Anyway, I'm taking the complete responsibility of it. When we are naming the film, first of all, actors are not made part of it. But if ODD and my director have decided to go with a certain aspect of titling the film, I personally didn't see any problem there. But there is a last section which through social media expressed their reservations. For those people, we decided to change the title. When we went to the court, we were ready to change the title. And in one hearing, everything was taken care of. Now, naming a film is not a very big thing. But we have to be very, very conscious about one thing, that it should be with the essence of the film. When we are talking about Pandit or Ghuskhor, we are not talking about all the people. Mm. We are talking about this character. So in this film, what is this character called? And he's not Pandit, it's Pandat.
1: Pandat.
0: Mm. It's Pandat. That he's very popular with that nickname that police department has given it to him. He's a Delhi police guy. Mm. Okay. Now, people have reservations. We changed it. We don't have any ego about it. Mm. No hesitation, nothing. We respected their reservation. And because at the end of the day, they are going to watch the film. But tell me, Padmaja, how is it right to send me death threats? Mm. How is it right to drag my family into the whole picture and say all kind of obscene words? What is my family's fault? My family has female members that you are talking about. I'm telling you, you as a woman, how far you think it is right to demean a woman who has no responsibility in naming the film? How far it is right that you are sending the death threat to me, who is part of it as an actor?
1: Death threat? Saying yes. What? For the name?
0: I mean, just for the name. So.
1: Who are
0: this,
1: these people?
0: I mean, see, there are bots, there are trolls everywhere. And whom to take seriously, whom not to take seriously is very difficult to filter. Mm. So,
1: but why do people
0: I was disappointed.
1: Family? What does your family
0: I really
1: do
0: don't know. I was feeling bad for my family members who have nothing to do with it. They're talking about my 15-year-old daughter. They're talking about my wife. So, for me, I don't let these people affect me. Mm. I felt pathetic. It's coming from the people, same people, who respected me for everything that I have done. If you are criticizing me in a nicer and gentler way, mm. I will bow down my head and change that about myself. Mm. And we've done it. But you know, we are living in a time where there is an advantage of digital media, then there is a disadvantage too. Mm. I think we'll have to live with it.
1: क्या आप खुद को self-censor करने लगे हैं? क्या आप do you think twice before accepting a project? Do you examine its politics? Do you think अच्छा इसका नाम क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे?
0: To say that it's not affected, it's affected not only me, the entire industry. It has become a menace. Today, it's a menace. If it is a good thing, it's a positive thing. We are creative people, boss. We are not here, you know, with guns in our hands. Mm. We are not here to offend our audience, not at all. Mm. Because audience is somebody that we want to show our film to. We don't want to show our film to an empty hall, mm. right? So we respect them. We always respected them. But today, the kind of scrutiny that is happening about everything that we own or that we have is disgraceful. Is if every citizen is important for this country, do you think we are not? We are also part of the country. You know, if I'm an actor that you respect, my family is equally important, right? I can say it with all loudness and with all gentleness and politeness that I consider myself as one of the most responsible countrymen who's been doing his job with utmost honesty and integrity. I think I deserve a little bit of respect from people.
1: 100%. So, when you're saying that you start to rethink or self-censor,
0: right?
1: In what way? मतलब क्या आपकी सोच होती है कि राजनीति से दूर रहो?
0: नहीं मतलब ये ना ये लाइन अभी ये लाइन हटा दो यार, इससे प्रॉब्लम हो सकती है.
1: कैसी लाइन?
0: है ना पता नहीं, मतलब डिपेंड करता है क्या लाइनें हैं एक्जैक्टली, तो मैं अभी कभी नहीं बता पाऊँगा ये लाइन यार. नहीं नहीं नहीं यार, ये मत करो. सो गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, मतलब हमको जो है बहुत सारी चीज़ें देख करके चीज़ों को फिर आपके सामने लेके आना पड़ता है.
2: अब उस तरह का जो हम एक फ्रीडम महसूस करते थे हम नहीं करते हैं, बिकॉज सडनली जो है पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू कहीं भी शुरू हो जाता है, कुछ भी शुरू हो जाता है, आउटरीच के नाम पे आप भद्दी भद्दी गालियाँ देते हो, तो ये कहाँ तक जायज़ है मुझे नहीं पता। मेरा अपना भारत, मेरा अपना हिंदुस्तान, मेरा अपना इंडिया जो है ना, ऐसा तो नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।
1: Well, I certainly hope that finally all of this really bad experience, you can keep it behind, you can leave it behind with Governor.
2: Governor!
1: With Governor.
2: coming on 12th June. Please. And Padmaja is going to watch it with her family.
1: I will watch it. I will watch it for sure. And I will make sure that I come and give feedback, because I think what gets lost in this entire noise of outrage, of anger, right, of short tempers, is some really good films, like we said right at the beginning. Right. एक वक्त था जब हम जाके स्विट्जरलैंड में फिल्में देखते थे, अब हम अपने देश में जो क्या हुआ है इतने सालों तक, जो कहानियां बताई हैं लोगों ने, उनकी फिल्में होंगी। फॉर मेकिंग सच फिल्म्स, मनोज वाजपेयी, थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू पद्मजा, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू। वी एट एनडीटीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। This was the hottest election in all of India. And all of India watched it on NDTV. Why I say this, this could be a big story.
3: Thank you.
1: Stories that no one else had.
4: The memorial they have built is not just for Avicii.
1: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
5: Is bakti apar afro afrika
1: moments that gave competition viral fever.
6: Habib ka gunda hamla kiya.
7: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा।
8: बंगाल बचाने का वोट।
9: फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर एवरी वुमन हियर।
1: व्हेन इट वाज एनीथिंग बंगाल, यू ट्यून्ड इन ओनली टू एनडीटीवी। दिस जीओजी सिलेक्शंस, एनडीटीवी।
10: साइज ऑफ फिश, व्हाट टेस्ट ऑफ फिश यू लाइक।
11: द न्यूज़, आयुष, सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स? Picture this, the biggest stage, floodlights, wow. 4K, the works.
12: Where's the hook?
11: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
12: Where's the hook?
11: Think about this, front page advertisements and hoardings.
12: Bro, where's the hook?
11: Cross-platform, digital first, virality.
12: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You got to be original in a world where everything seems generated.
11: That's it. That's what we're looking for.
12: The best campaigns.
11: The hottest trends.
12: The smartest brand moves on our new show.
11: But wait, what do we call it?
12: The Hook.
13: Across the country.
14: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
15: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
16: Really?
15: Fashion that made you gag, films that made you fangirl, art that made it to the gram, and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
14: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
17: So many attacks.
14: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
17: It's incredible.
14: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
17: Welcome to Left, Right, and Center.
14: Hard facts.
17: War struck country.
14: Hard questions.
17: In the Ukraine.
14: 30 years of trust.
18: In the Kargil area.
17: North Ukraine.
19: In France. In Italy.
17: At Srinagar.
19: Prime Minister France.
17: Vishnu Shom for NDTV.
14: Vishnu Shom, only on NDTV.
20: What's the drama?
1: Floppy.
3: people.
5: Kolkata trap.
8: The highest number of voters.
13: Tamil Nadu votes decisive.
16: Tafra-tafri ka mahal hai. Udhampur patrao kiya gaya ha.
18: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
19: TVK headquarters here.
20: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
21: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
22: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
18: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
23: Happy meeting NDTV team here.
24: Thanks for NDTV.
25: Padmija Joshi.
26: Shreya Shide.
27: This is Shreya Ghosh.
28: Rakhandeep Chaudhary.
29: Manogya Loiwal.
30: Deepak Bopanav.
31: This is Viktik.
32: Tanushka Datta.
33: Sam Daniel.
34: Vika Ramaswamy.
35: Ritu Rajpurohit.
36: Shiv Arur.
37: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
38: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
39: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
40: Hello and welcome to Watch and Prime 5.
39: The show that sets the prime time agenda.
41: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
39: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
42: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth. We connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
14: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
43: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
44: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
45: Illegal migrant, ये बांग्लादेश की घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
46: भय से भरोसा is the transition which is happening now. भय से मुक्ति is the victory.
47: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
48: ओडिशा का है. प्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
49: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
50: The people of Kerala understood the real politics of CPM and I left the Democratic Front.
51: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
52: Higher ed, check the audio. Higher ed, check the audio.
53: Let's do it. Let's do it. Let's start.
54: Breaking story, we're jumping straight into it.
55: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
56: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
57: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
58: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
59: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
60: The line of control, Shiv Arur, NDTV.

0: देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
1: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
2: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
3: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
4: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग

0: start with the most obvious question. A lot of biopics are made on heroic figures. Shivaji pe banta hai, aapka Aurangzeb pe bhi banta hai, Akbar pe banta hai, Akbar the Great. Why make a film about a former RBI governor?
1: Well, there's an answer lies there in your question.
0: Mm.
1: That we made films on army heroes, social activists, teachers. We made films on each and everyone possible who contributed to the growth of the nation.
0: Mm.
1: But somewhere economics is a subject that everybody thought that, you know, it's hard to comprehend for the common audience, and they always run away from it.
0: Mm.
1: But there is something very, very new, and that becomes also a primary reason for me to say yes to the film, to agree to do the film. Not only it's talking about RBI governor,
0: mm.
1: but it is primarily a thriller.
0: Mm.
1: Set in 1990, in the time of political instability,
0: mm.
1: in the time of extreme economic instability,
0: mm.
1: And there lies the reason for making this film.
0: Mm.
1: How one man, a quiet, very reserved man,
0: mm.
1: comes into the picture, recommended obviously by Mr. Gandhi,
0: mm.
1: To the government, and he skipped the line. He skipped the line of many of the officers or bureaucrats who were touted to become RBI governor,
0: mm.
1: and he was flown into straight away to this position.
0: Mm.
1: So there were many naysayers,
0: mm.
1: there were many critiques.
0: Mm.
1: It's like usual trope, mm. right?
0: You would be set up for defeat. You would be set up for failure.
1: So you set up for defeat. He starts as an underdog,
0: mm.
1: and how his one decision and how he changed the whole course of future of this country.
0: Mm.
1: Today, where you are sitting with so many cameras here, there is somebody who started all of this.
0: Mm.
1: I mean, he was one
0: wearing imported clothes.
1: Yeah, wearing, not imported. I wouldn't say that, you know, S. Venkataramanan was wearing imported clothes.
0: No, I'm saying the fact that he brought in liberalization.
1: Yeah,
0: he was instrumental in that.
1: He was instrumental.
0: That is why we have the kind of economy we
1: he
0: have.
1: He was one of the heads in those times.
0: Mm.
1: But since everyone showed a lot of trust
0: mm.
1: in this one person, and with so much confidence, he was gotten into it to salvage the country
0: mm.
1: from this situation. And the time was very limited.
0: Mm.
1: So it's a thriller running against time.
0: Mm.
1: So what I was trying to get at is a usual mainstream trope.
0: Mm.
1: But the backdrop is RBI.
0: Mm.
1: But the backdrop is economics.
0: Mm.
1: I can say it with lot of confidence. That in this very building of yours,
0: mm.
1: 90% of the people who work here were very bad in mathematics in mm. schools, including me, who's
0: including
1: sitting here.
0: Me.
1: Okay. So how to make it interesting?
0: Mm.
1: How to make it exciting? And how to make it engaging?
0: Mm. Politics as it is, लोग थोड़ा सा डरते हैं. Film engage करने में और ऊपर से आप economics भी ले आइए.
1: Economics है इसमें.
0: और फिर उसको thriller बनाइए.
1: So I would say there's a victory of writing when it comes to governor.
0: अब मेरे को ये बताइए, because you're talking about a time जहाँ पर Congress की सरकार थी, राजीव गांधी जी,
1: चंद्रशेखर जी
0: की सरकार थी, let's say non-BJP सरकार थी, क्योंकि अब जो political फिल्में बनती हैं, largely वो ये कहा जाता है कि भाई आप एक ही तरीके की thought का, एक ही तरीके की ideology का महिमा मंडन करते हैं. So to pick a film from before 2014, how do you navigate those landmines? कि भाई हम एक देश की कहानी बता रहे हैं, किसी एक political ideology या किसी political party की हम line तो नहीं कर रहे हैं.
1: But आपको जानकर कि आश्चर्य होगा कि in getting Mr. S. Venkataramanan to that position, everyone was responsible.
0: Mm.
1: On one hand, he was recommended by Mr. Gandhi.
0: Mm.
1: And also there was an approval from Dr. Manmohan Singh,
0: mm.
1: but also the BJP opposition,
0: mm.
1: Who was in alliance, the finance minister was Yashwant Singh,
0: mm.
1: Chandrasekhar ji was the prime minister. So there was an approval and agreement
0: mm.
1: from each and every party.
0: Mm.
1: They had to come together. There was no other option left. either you come out of it or you declare this nation bankrupt. Mm. So this was a crisis time. We are talking about why this is important for the Gen Z or the generation next, that this country, you know, was not always supplied with Coke and Pepsi. Or this country was not holding mobile phones. There was one person before malls came in, you know, who was responsible, whose one decision was responsible, where the entire nation came together and took this decision that the challenges were the naysayers within the department. Everyone thought that, you know, he's the scapegoat for the political political regime, and everyone was waiting for him to fail. And there was this man and his conviction, man with very few words, with loads of action, loads of ideas, and how when he implemented it, and he became, and the nation became successful in executing it, that becomes the reason for Manmohan Singh and P.V. Narasimha Rao Sarkar, you know, to come up with liberalization and how the open market economy, everything started, you know, unfolding. So I'm not interested in that as an actor. What I'm interested in, a protagonist coming into a challenging time, and with his effort and ideas, we somehow accomplished something impossible without letting anyone know about it, without letting even the media know about it.
0: You engage with politics. आपके बिहार चुनाव के दौरान भी आपका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि आप क्या आप एंडोर्स कर रहे हैं आरजेडी को?
1: देखिए, ये तो आपके लोगों ने बताया होगा आपको. मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा था.
0: नहीं, नहीं, ऐसा वीडियो बनाया गया था कि भाई मनोज जी एंडोर्स.
1: हां, ऐसा वीडियो तो कभी भी बना सकते हैं. मैं आपको
0: जैसे आपने एक और पहले दिया था, स्टेटमेंट दिया था जो इनटॉलरेंस की पूरी बात हो रही थी, उसमें आपने एंगेज किया था कि भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना खास इनटॉलरेंस देश में हो रहा है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को,
1: मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना मैं बिलोंग करता हूँ, ना मैं कोई मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं. मैं पागल हूं अपने अभिनय के पीछे. और जहां तक बात है पढ़ने लिखने की, तो जाहिर सी बात है मैं अज्ञानी तो नहीं रहना चाहता हूं. मैं उन लोगों की तरह से नहीं होना चाहता हूं कि जो ट्विटर पर जाकर के लोगों को गाली देते हैं बिना किसी ज्ञान के. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई अपने काम में लगाना चाहता हूँ. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई उस फिल्म में लगाना चाहता हूँ जो फिल्म मैं कर रहा हूँ. अगर मैं पढ़ूँगा लिखूँगा नहीं तो मैं गवर्नर कैसे कर पाऊँगा? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को एजुकेट करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉलेज गैदर करूं. ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुझसे यंग जनरेशन भी आके बात करता है. सो व्हेन द यंग जनरेशन इज कमिंग एंड टॉकिंग टू मी, आई कान बी टॉकिंग टू देम इन एयर. माय कन्वर्सेशन विद देम विल बी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई गैदर्ड, राइट? सो as a responsible citizen of this country, we try to educate ourselves or enlighten ourselves.
0: क्या पूछते हैं आपसे young generation? क्योंकि आजकल Gen Z की बहुत बात होती है. क्या पूछता है Gen Z आपसे?
1: देखिए, Gen Z के पास में क्या होता है, जो usually I'm always wondering, they want to spend some time with me, and I keep telling them that, you know, spending time with me, I will say few words that may click with you or inspire you. But at the core of it, you will have to work very hard. But somewhere they are coming to me expecting that कि मैं एक कोई acting की पुड़िया दे दूँगा. पुड़िया तो ऐसी कोई नहीं होती है. पद्मजा जो है कई सालों से इस न्यूज़ रूम में बैठ रही हैं, तब जा कर के उनको ज्ञान हुआ. लेकिन आपको याद होगा जब पहली बार आप न्यूज़ रूम में आके बैठी होंगी, तो इन कैमराज ने और इस माइक ने आपको बहुत डराया होगा. आपके पीछे जो ये सारा चल रहा है, इसने बहुत डराया होगा. इन लाइट्स से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी. पीछे लोग हल्का सा भी मूव करते होंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता होगा. इस ओवर द ईयर्स यू गेन्ड नॉलेज अबाउट योर प्रोफेशन. यू गेन नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस. यू गेन नॉलेज बाय रीडिंग अबाउट इट, बाय रीडिंग वेरियस अदर पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड दैट्स हाउ यू रेडी योर सेल्फ टू इम्पार्ट द सेम एक्सपीरियंस and knowledge to the next generation, right? And this is what I do.
0: But आपको लगता है कि Gen Z के लिए अभी देश एक ideal situation में है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आपने जेनजी का जिक्र उठाया था।
1: आप जो है ना फंसवाने के चक्कर में आई हुई, आप तैयार वार होकर के आई हैं।
0: अरे सब लोग जो है आपसे इतने सवाल पूछते हैं तो दो तीन सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन शुरू करने वाली है, जेनजी आपसे पूछेगा मनोज जी बताइए क्या करें अभी इस देश में, जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या आप देखें एक विकल्प कॉकरोच जनता पार्टी, क्या करेंगे मनोज?
1: अच्छा देखिए क्या है, पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले उनको ये बात बोलूँगा कि आप अपनी स्थिति में अपनी स्थिति को बेहतर जानते हैं, मनोज वाजपेयी नहीं जानता है। मनोज वाजपेयी इस समय 32 साल से इस फिल्म के निर्माण में लगा है, एक एक्सपीरियंस है। मैं आपकी स्थिति तक जानना चाहूँ तब भी नहीं जान पाऊँगा, लेकिन अगर आप स्थिति को लेकर सजग हैं, उसको लेकर के प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो जो भी संभव हो सके वो कीजिए। और आपको एम्पावर किया गया, देखिए आप अगर सोशल मीडिया से आप एम्पावर कर रहे हैं, मोबाइल हर हाथ में फ़ोन देना मतलब क्या है? एम्पावरिंग द पीपल ऑफ द कंट्री। जब आप एम्पावर करते हैं तो कुछ चीज़ें उनकी आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन एट द कोर ऑफ इट, इफ़ यू आस्क मी, एट द कोर ऑफ इट, मैं हमेशा जो है एक ही बात कहता हूँ। मेरे बचपन में एक मास्टर साहब थे, उनका नाम था छेदी महतो। उनके क्लास में मैं जाता था, जो कि मैं एक सम्मानित परिवार से आता था, तो मैं हम लोग अपने अपने बोरी बिछाते थे, बैठते थे उस झोपड़ी में, और मेरे बगल में एक रामचंद्र था जो सुबह घास काट करके अपनी गाय को खिला करके और फिर वो स्कूल आता था। हम दोनों की उम्र क्या थी? 6 साढ़े 6 साल 7 साल। और रामचंद्र टॉपर था। रामचंद्र के जीवन में छेदी महतो साहब का बहुत बड़ा योगदान था। रामचंद्र जो है वो ज़्यादा आगे कॉलेज के बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, रिसोर्सफुल नहीं था, तो उसने अपना ट्यूशन खोला और वो ट्यूशन सुपरहिट था बेतिया हमारे शहर में। हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए रामचंद्र जो है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर हो गया था। रामचंद्र ने उनको पढ़ाना शुरू किया था, उनको सिखाना शुरू किया और कई सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई। तो मेरा ये कहना है जो यंग जनरेशन होता है ना, उसकी उम्मीद की एक ही किरण होती है, छेदी महतो। हर किसी का एक छेदी महतो होता है। मेरे लिए जो छेदी महतो थे, मेरे लिए जो गंगा सागर सर थे मेरे स्कूल के, तो जब नई ऊर्जा जब होती है, हमको उनको बिठा करके उनको सुनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है या है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके आगे कुछ भी आप सवाल करेंगी तो मैं कहूँगा गवर्नर के आगे आउट ऑफ सिलेबस है।
0: एक नया जॉनर भी है, जैसे कि पिछले साल हमारे धुरंधर आई थी, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड बहुत सा क्रिटिसिज्म भी हुआ था ये कह के कि भाई ओवर द टॉप है एवरी थिंग, यू डू नॉट नीड टू यू नो बीट पीपल ऑन द हेड विद अ हैमर। हाउ डू यू कंपेयर that genre of filmmaking with what maybe is a more quiet nationalism keh lijiye ya quiet storytelling keh lijiye, how do you compare the two? kya dono ke liye appetite hai desh mein?
1: ab samasya se rahi hai, aap jab choti thi jab badi ho rahi thi apne parents ke sath film dekhne jati thi tab ka samay bhi yaad kar lijiye, bade bade budget ki filmein bhi chalti thi aur chote budget ki bhi filmein chalti thi. matlab example ke taur pe main samjha raha hu ki there used to be a time when Mr. Bachchan came on the scene and it was like a storm, he was hurricane. You matlab no star could stand that storm, everybody matlab aandhi ki hawa mein ud rahe the sabke sab, but at the same time there was this quiet production house which was building up but making small and mid range film, and their hero was Amol Palekar. Even they were very very successful.
0: Hrishikesh Mukherjee.
1: Only in the time of Mr. Amitabh Bachchan, there was this parallel movement happened, where Mr. Shyam Benegal and so many others were making films and they were getting their audience to the theater. So every time will have its big budget, mid budget, and small budget.
0: बट नाउ दिस इज नया भारत, नया भारत जहाँ पे कुछ बड़ा होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को एकदम घुटनों पे ले आया टाइप की फिल्म।
1: नया भारत में एक एक एक हिंदुस्तान और भी रहता है, जो जो युवा वर्ग है, एक नया भारत में वो सब वो मजदूर भी है, नया भारत में ऑटो रिक्शा वाला भी है, तो हम सबके लिए फिल्में बनाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस नए भारत की जिसकी बात कर रही हैं आप, उसमें परिवार तो इस भारत से अलग नहीं है। वो परिवार जो ज़्यादातर जो वायलेंस वाली फिल्में या किसी और तरीके की फिल्में देख नहीं पाता है साथ में, गवर्नर उनके लिए है। और एक औरत अगर फिल्म देखने नहीं जाती है तो पूरा परिवार उस फिल्म को देखने से वंचित रहता है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से साथ कह रहा हूँ कि ये हर औरत फिल्म देखने जाएगी। ये हमारी कहानी वो एक सिर्फ ब्यूरोक्रेट की नहीं है, उसके परिवार की भी है। एक उसकी बेटी की है जो UPSC की परीक्षा देने वाली दे रही है, ये सारी उम्मीद की है, महत्वाकांक्षा की है, जो सब मिडिल क्लास या जो सैलरी वाले जो है अपने बच्चों के लिए देखते हैं। जी
0: आपने the other recent film that you did, which again ran into a lot of controversy, was Ghooskhor Pandit. When you look back at it, do you think it was warranted? Because ये मामला तो पूरा मतलब कोर्ट तक का गया, वहाँ पर लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए, कहा कि भाई आपको सिर्फ पंडित ही क्यों घूसखोर दिखते हैं। इन रेट्रोस्पेक्ट आपको लगता है कि इसको थोड़ा टेम्पर किया जा सकता था?
1: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल the film is still not released. Netflix is the OTT. It will come in August sometime, I think. So when we are naming the film, I'm not disowning the film. Anyway, I'm taking the complete responsibility of it. When we are naming the film, first of all, actors are not made part of it. But if ODD and my director have decided to go with a certain aspect of titling the film, I personally didn't see any problem there. But there is a last section which through social media express their reservations. For those people, we decided to change the title. When we went to the court, we were ready to change the title. And in one hearing, everything was taken care of. Now, naming a film is not a very big thing. But we have to be very, very conscious about one thing, that it should be with the essence of the film. When we are talking about Pandit or Ghooskhor, we are not talking about all the people. We are talking about this character. So in this film, what is this character called? And he's not Pandit, it's Pandat. It's Pandat. That he's very popular with that nickname that police department has given it to him. He's a Delhi police guy. Okay. Now, people have reservations. We changed it. We don't have any ego about it. No hesitation, nothing. We respected their reservation, and because at the end of the day, they are going to watch the film. But tell me, Padmaja, how is it right to send me death threats? How is it right to drag my family into the whole picture and say all kind of obscene words? What is my family's fault? My family has female members that you are talking about. I'm telling you, you as a woman, how far you think it is right to demean a woman who has no responsibility in naming the film? How far it is right that you are sending the death threat to me, who is part of it as an actor?
0: Death threat? Saying yes. What? But for the name?
1: I mean, just for the name. So
0: who are these people?
1: I mean, see, there are bots, there are trolls everywhere, and whom to take seriously, whom not to take seriously is very difficult to filter. So
0: but why do people
1: I was disappointed.
0: Family? What does your family
1: I really
0: do?
1: Don't know. I was feeling bad for my family members who have nothing to do with my, they are talking about my 15-year-old daughter. They are talking about my wife. So for me, I, you know, I don't let these people affect me. Mm. I felt pathetic. From the, it's coming from the people, same people, who respected me for everything that I have done.